सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 से प्राप्त की जा सकती है।